सोच। एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज, अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कम्प्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई, नागरिकता भए पुग्छ, हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी, एलजी लाइफ्स गुड।

साथी धुमधाम राइट छ फन नयाँ इबी मेरो टियागो इबीसँग लाइट छ सुपर फन एल्डर्स लभ इट सो डु द यंग इट्स सेफ इट्स प्लेफुल क्याच द